पड़ पड़ गड्डी लती है, पड़ पड़ परिया साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डिया खात, परिया जेते परस परस परिया।

हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत रोदरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा हे प्राण नाथ गोविंद हे कृपा निदान जगद गुरु हे संसार ताप हरण है करुणा में सब दुख हरो हे शरण योग दयाल है

0: की अपर अपार राम।
1: आप जी रोजाना इस अस्थान तो अमृतमयी बाणी की लड़ीवार शब्द विचार का लाहा प्राप्त करते आ रहे हो। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज सतगुरु जी वल्लों बिहागड़ा राग दे विच जो पावन शब्द उचारण किया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी पावन अंग 542 दे उपर सुभायमान है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी कृपा करते ने परमेश्वर दे

प्रेम जिदे अंदर परमेश्वर नू मिलन दा प्रेम बन गया, नैन तरसन दर्श परसन। मेरे नैन तरसदे ने तेरे दर्शन परसन वास्ते, आबार दे नहीं। ये कई बार जिक्र किया, ये जड़िया शरीर दे नाल लगिया हुई अखा ने ये माया भी ने, ये सिर्फ संसार ही देख सकदियां। आ जड़िया दो अखा ने ना, ये केवल संसार ही देख सकदियां, ये निरंकार नहीं देख सकदियां, ये उहदा दीदार नहीं कर सकदियां। क्योंकि से अखड़िया बियन, वो अखियां होर ने, वो मन दियां अखा ने, वो जिंद जिस जिंद ने जीव इस्तरी ने दीदार करना है, ये उहदियां अखा ने, ये उस अखा नाल उस प्यारे दा दीदार है, ये शरीर वालियां अखा दे नाल नहीं। इस वास्ते वो जिहड़े नेत्र ने अंदर नैन तरसन, वो तरसदे ने कादे लई, दर्श परसन, वो दर्शना नू परसन वास्ते कि वाहिगुरु किते तेरा दीदार हो जाए। नह नींद रैण विहाणिया, हे वाहिगुरु जी इन्हां नेत्रां नू ऐसी दर्शना दी प्यास लग चुकी है कि जे रात भी आवे ते नींद नहीं आउंदी, अखां बंद नहीं होंदियां। क्योंकि नींद आएगी ते अखां बंद होणगियां ना, अखां खुल्लियां रहिंदियां, पता नहीं केड़ी घड़ी केड़ा पल वो प्यारे दा दीदार हो जाए। क्योंकि जे नींद आ गई फिर ते समा सुत्तियां लंघ जाणा है। कईयां दी जिंदगी सुत्तियां ही लंघ रही है, उन्हूं जगाउण दी कोशिश। देखो फिर समझ लेना, ये शब्द तक पहुँचण लई जिहड़ा अज आपां शब्द विचार रहे हां, इत्थे तक पहुँचण लई पहलां सानूं जागना पैणा है। असीं सुते पए हां, उहदे लई असीं गुरु संगत दे विच आए हां वी महाराज जगाओ सानूं शब्द दी चोट दे के। जदों तुसीं सानूं जगाओगे फिर जदों जाग आएगी फिर दाते दे नाल प्रेम पएगा, दातां दे नाल नहीं। फिर जदों दाते दे नाल परमेश्वर नाल प्रेम पै गया फिर उहनूं मिलण दी तड़प जदों होएगी फिर नींद आउणी कोई नहीं, फिर अखां बंद नहीं होणियां, फिर हर वेले हर घड़ी बस ये होना भी किहड़े पल उहदे दीदार हो जाण, उहदे दर्शन हो जाण। दर्शन प्यासी दिनस रात चितवो आनंदन, नीत खोल कपट गुर मेलियां, नानक हर संग मीत। उहदी हालत फिर ये है कि पति दूर गया होया है ते इस्त्री दरवाजे विच खलोती हुई उड़ीक कर रही है भी हुणे आया हुणे आया हुणे आया हुणे आया। हुण उह थक गई खलोते खलोते, पैर भी दुखन लग गए, पर पिछे अंदर जाके कमरे च बैठदी नहीं है। पता क्यों? भी मैं किते अंदर आवां ते उधरों प्यारा आ जावे। पंथ निहारे कामणी, लोचन भरी ले उसासा। उर ना भीजे पग ना खिसे, हर दर्शन की आसा। अंदर दर्शन दी आस रख के पंथ निहारे, वो रस्ता तक रही है, रस्ता देख रही है भी केड़ी घड़ी केड़े पल मेरा प्यारा आ जाए। उर ना भिजे अंदरों भिजदा ही नहीं, पग ना खिसे पैर पिछे नू मुड़दे ही नहीं पए। ये है प्यार, ये है उहदे दर्शना दी तड़प भी मैं पैर पिछे नू नहीं करना भी मैं किते अंदर मुड़ा ते उधरों वो प्यारा आ जाए। जिहदे अंदर ये तड़प हुंदी है ना उहनू नींद नहीं आउंदी, मन दे तलते शरीर दे तलते नहीं। क्योंकि ये जिहड़ी अवस्था है ये शरीर दी नहीं है, ये मन आत्मा दी अवस्था है। ते जिस अवस्था विच प्यारे दा दीदार होना है उस अवस्था दे विच तां मन सुता पिया है, उहनूं जगाउण दी कोशिश हो रही है। जागो जागो सुतियो चलिया बणजारा,
ਕਈ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਜਾਗ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਨੈਣ ਤਰਸਨ, ਦਰਸ ਪਰਸਨ,

0: किछ हमारा न चले राम।
1: हे प्यारे जी, मैनू उलांबे मिलदे आ कि तैनू हजे तक कंत क्यों नहीं मिलिया। मैनू रोज जड़े ने उलांबे मिल रहे आ, असल दे विच ए कह रहे आ कि तू संगत भी कीती, बाणी भी पढ़ी, सेवा भी कीती, अमृत वेला भी संभालिया, तैनू कंत क्यों नहीं मिलिया। असल विच दोष तेरे अंदर है, कंत दे अंदर नहीं। कंत तो मिल जाएगा, वो तो मिलने लिए तैयार है, पर मिलने लिए मेरी अवस्था, मेरा जीवन भी तो उदा का होना चाहिए ना। कत्तक कर्म कमावने दोष न काहू, जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। ये दोष मेरे अंदर है, मैनू उलांबे मिलते हैं कि तू नितनेम नहीं चज नाल कीता, तू अमृत वेला नहीं संभालिया, तू सतसंग नहीं आके नाम बाणी नाल नहीं जुड़ आया ते हाँ, पर जुड़ना नहीं कीता। कई तरह के उलांबे मिलते हैं कि तू तेरे च कमी है, तेरे विच कमी, क्यों नहीं मिलता कंत। सतगुरु महाराज नू बेनती की, पातशाह ये मेरे अंदर केड़िया केड़िया खामिया ने, कमिया ने। महाराज कहते जेड़े रंग तू चढ़ाए आ इदा ते कंत मिलना कोई नहीं, तू भावें बारों धर्म का चोला पा लै, माथे तिलक हथ माला बना, भावें तू हथ च माला पकड़ लै, मथे तिलक ला लै, भावें असियां बारों पंज ककार धारण करके साबत सूरत होके धर्मी हो जाइए, पर गल तां अंदर दी है। अंदर की भरिया, बाहरों ते चोला पा के धर्मी हो गए हैं, धर्म का डंबर रच के, अंदर की है, उन्हें अंदरों मिलना है, बाहरों थोड़ी मिलना है। शरीर करके ते मेल नहीं होना, मन आत्मा करके होना है। ते मारे कहिंदे अंदर

हे प्यारे जी, मेरे अंदर बड़ी आस है ते प्यास है। रैन दिनी अर, भावें दिन होवे ते भावें रात होवे, मेरे लिए तो एको जी है दिन रात, क्योंकि अंदर आस है तेरे दर्शन की, प्यास जड़ी है ना, आस है कि तेरा दीदार होएगा। रह ना सकी है एक तिले, एक तिल जिन्ना भी रहना औखा है, पल जिन्ना भी, थोड़े जे समय वास्ते भी। इसलिए नानक पयंपै, नानक जी आखदे आ गुरु अर्जन देव जी, संत दासी मैं तेरे प्यारियां दी दासी बनन लई तैयार हाँ, मैं सत संगियां दे चरणा दी दासी बनन लई तैयार हाँ। तौ प्रसाद, तौ तेरी किते कृपा हो जाए, मैं तेरे प्यारियां दे जोड़े भी चढ़न नू तैयार हाँ, तेरे प्यारियां दे चरणा दे विच दासी बनन नू भी तैयार हाँ। तौ प्रसाद, किते तेरी कृपा हो जाए, मेरा पिर मिले ते मेरा प्यारा मैनू पेनू मिल जाए। ये बड़े प्यार वाला शब्द है और परमेश्वर दे मिलाप लई एक तड़प नू बयान किया गया है। जिन्नी को समझ गुरु पातशाह ने दिती, उस हिसाब दे नाल आप जी दे नाल इस विचार दी सांझ पाउण दा यतन किया है। महाराज जी कृपा करन, साडे अंदर भी ये प्रेम बन जाए, तुहाडे सारिआं दे अंदर ये प्रेम बन जाए, ते साडा गुरु दे दर ते आउणा सफल हो जाए, बाणी दा अभ्यास कीता सफल हो जाए। अरदास करो महाराज जी, ये प्रेम दा जाग, भगती दा जाग ला दिओ, ताकि असी परमेश्वर दा मिलाप हासिल करके अपने जन्म नूं सफला कर सकीए, अपनी

मन बसाव नाम जिनके मन वसया बाजे शब्द कनेर कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेर साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा दिन पुखा सब गवान कर सात सुख मन आयो से आदन इच्छा सब पुजान सदा कुर्बान किता गुरु बिट हो जिस दिया है बड़े आज कह नानक सुनो संत शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सपग हर सपग शब्द वाजे कला जित कर तार पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ कुमार तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे कह नानक दस को होआ तित कर अनहद वाच अनंद सुनो बट पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्राप्त पाया तरे सगल बसूरे दुख रोग संताप तरे सुने सची वाणी संत साज पे सरस पूरे गुर ते जाने सुनते पुनीत कहते भगत सतगुर रहे आप प्रभु।

शरण परे की रखो हो शर्मा, जप तप संयम धर्म ना कमया, सेवा साध ना जन्य आहार राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई, अमरी करो हद रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम काब हो, आप हाथ दे मोहे बचावो, सुखी बसे मोर परवारा, सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सवे रन को आय संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिखो हमारे तारी है, चुन चुन शत्र हमारे मारी है, आभाद मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जाओ सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करी हो रक्षा, राख लियो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जमन काल सलोक सवारा, नमस्कार है तहें हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो, आद्यंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, शिवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कड़ कड़ के पढ़ पढ़ की जन्ने, जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा तर्त तब देहे अपारा, जब आकर्ख कर तुहों कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बोझ विचारे, तुम सब ही ते रहित नरालम, जानत भेद भेद अर आलम, ड्रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनीन अनाद असंभ, तका मूढ़ उचारत पिता, जाको पेव न पावत बिदा, ताको कर पाहण अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव,
ड्रंकार का चीनत नह भेव आप आपणी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जय पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा एक रूपे अनुपस रूपा रंक भयो राव कहीं पूपा अंड जे रज से तज कीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंप आजुग स्रूप स्वयंप अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रण गाता जे अस्तुजे तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह रक्षा हुए ताही सब कल्ला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्कल्ला कृपा।

तब होई दुष्ट सह शवय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें सवारा काल फांसते ताहे ओबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओबारी सरठो मोह सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओबारी सरठो मोह सहाई दुष्ट दोखते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुम्हारे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुपेद कहें हम एक ना जान्यो सिरियस पान कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छड के गयो तोहारो द्वार बहिं गहे की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहारो द्वार बहिं गहे की लाज अस गोविंदास तोहा। रामकली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनंत भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता वाया सह सेती मन वजियां वाधियां राग रतन परवार प्रिया शब्द गावन आइया शब्द तंगाव हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सवना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरे घर ता तेरे सब किछ है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जेनो भुखा सब गवैया करशां सुख मन है बसिया जेनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दियां एह बड़ियाइया
कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो पे आरो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तसक हुआ तित घर अन्न हद बाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते बनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो स्लो महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेरा मत होई

उचेते सगल समग्री तुमरे सूतर तुमते हो सो तुमरी गत मित तुम ही नानक दास सदा कुर बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं

जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लथा, मेरे ही अरे रतन नाम हर बसिया।

हम अंधुले को गुर अंचल दीजे, जन नानक चले मिलन था। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

जुगो जुग अटल दीन दुनी दे मालक सर्वरे कायनात दे सांझे रहबर गुरुआं के गुरु पीरां दे पीर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आई। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर।

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरु धामां दे

लहर जगद तर तरिया तर तरिया। श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्पे चार।

गुण बन चार खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुणा गावे गुण शेष सहस जेवा रस आद अंत लिव लाग धुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर

कवन विद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर कीम न परिए बरमादक सन काद शेख गुण अंत न पाए अगो गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए जय काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हार गुरु नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते।